वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पए खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पे।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आ बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिले ओ जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटै गो शास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौ पगबेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जा ते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहचाना चूका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचा बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोभ सुपानी। काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतऊ ना जाई। कह कबीर बिचारी, पवसा गिरतार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु प्रपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै। मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना। अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। खाट

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुंचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

हे वैद बनवारी अपने संतै लिहो बारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जैं देखा तैं सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह।

है सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार है आप तरह सगले कुल तार दान संबंध सोई दिल धोवै मुसलमान सोई मल खोवै पढ़िया बूझै सो प्रवान जिस सरदरगह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सतका टब था निष्ट जग प्रष्ट होए डूबता इव जग कल मैं राम नाम सार अखी ता मिटै नाग पकड़ै ठगण कौ संसार रहाओ आठ सेती नाक पकड़ै सूझते तन लो मगर पाछा कछ ना सूझै एहो पद म्यालो खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश पाख्या गही सिहट सब एक वर्ण होई धर्म की घत रही अष्ट साज साज पुराण सोदै करै बेद अभ्यास बिना महर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचन दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोही सहस पद बिमल ननेक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही समय ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन समय चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिष पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मानो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौं मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाहीं कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुर सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास।

0: हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी हार गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर निर्डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचर बैसंतर तायो मलकाटी करते उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हरे और तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाव भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमति अंतर जागी हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुरबानी हर के संत सुनो जसकानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल सब किलविख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपयो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाल है गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो वाज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the love and message of Bhagwan Sri Sathya Sai Baba.
2: Radio Sai now presents some bhajans sung by devotees from Belgium.